0: लम्हा जरा गौर से सुनिए। कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बेकार फीमेल स्टाफ। VR राइजर्स महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबेंट ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356535207।
1: बटग्राम हलको दफारा दो खुशालई जीरे उस तासुला बल जाए ततलू जरूरत निष्ठा स्तासु पा अखपल हार।

0: बसकड़ी दीदी
1: हाँ
0: दादी बोली बसकड़ी लगता पूरा कर प्रोग्राम के सवाई सनात मात्रा से श्री गई ओए सवाई सलन लणो है खा वही प्रोग्राम के सनात मात सवाई सनाजम वगैरह अब बस हुआ सलन वाने से कड़ाई मारा हुआ है खा
1: आले दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए हम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये नहीं पहचान है
0: बस ढेर मन खा प्रोग्राम की देखा लियो जहान मन खा डेर सोरे होगा डेर सोरे होगा हाँ डेरा मानना